0: सपोज मेरे बॉस ने शाउट किया मुझे, मुझ पे शाउट किया, बहुत स्ट्रांगली शाउट किया, मतलब जो भी सबके सामने, तो फीलिंग ऑफ यू नो बिट्रेयल, फीलिंग ऑफ बीइंग हर्ट, फीलिंग ऑफ फील यू नो कि सबके सामने मेरी बेइज्जती हुई, सब कुछ, वो जो वो फीलिंग है उससे वो थॉट क्रिएट होता गया,
1: नहीं, वो जो थॉट क्रिएट की कि
0: उससे वो
1: सबके
0: फीलिंग
1: सामने उन्होंने मुझे इंसल्ट, सी द थॉट, सबके सामने मुझे इंसल्ट की, मैंने इतना सिंसियरली काम किया था, फिर भी मुझे इस तरह से डांटा, दीज आर थॉट्स विच आई, अब सिनारियो, बॉस ने मुझे डांटा, सबके सामने डांटा, वन थॉट इज इतना सिंसियरली मैंने काम किया था, सबके सामने मुझे डांट दिया, यही बात तो अलग से भी की जा सकती थी, पहली बात मेरी तो कोई गलती ही नहीं थी, फिर भी इस तरह से, यहाँ तो मेहनत करने का कोई फायदा ही नहीं है, कितनी भी मेहनत कर लो ना, इन्होंने तो कभी खुश होना ही नहीं, दिस इज माई थॉट्स विच आर गेटिंग क्रिएटेड, आई एम क्रिएटिंग इट, बॉस अभी वहीं है, ही हैज़ डन वॉट ही हैड टू डू, उन्होंने अपना रोल प्ले कर लिया, उस सीन को देख कर मैंने जो क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट की वो ये, और जैसे ये वाली थॉट क्रिएट की तो हाउ विल आई फील,
0: बट एक में
1: ऑब्वियसली वेरी
0: हाँ
1: लो, जो आपने अभी सारी बातें बोली ना, बिट्रेयल, रिजेक्ट, ये दीज आर नॉट फीलिंग्स, दीज आर
0: थॉट्स
1: थॉट्स,
0: हाँ
1: ये थॉट क्रिएट, फीलिंग इज ओनली अ फीलिंग लो, वेरी डिप्रेस्ड, उमंग उत्साह नहीं है, या फीलिंग वेरी एनर्जाइज, फीलिंग कैटेगोरिकल नहीं होती है, ये आपने कैटेगराइज किया था अभी, बिट्रे किया, इंसल्ट
0: आर
1: किया, मैं
0: नॉट
1: हर्ट हो
0: फीलिंग्स
1: गई,
0: दीज आर
1: यू नो
0: थॉट्स हाँ
1: ये
0: ये
1: थॉट
0: सारा
1: क्रिएट,
0: कुछ
1: फीलिंग
0: थॉट्स
1: इज
0: है
1: ओनली अ
0: वी काइंड ऑफ
1: फीलिंग
0: टेंड
1: लो,
0: टू
1: वेरी
0: मिक्सअप
1: डिप्रेस्ड,
0: बिटवीन द
1: उमंग
0: टू ऑफ
1: उत्साह
0: देम
1: नहीं,
0: के
1: ये थॉट
0: या
1: या
0: फीलिंग
1: फीलिंग,
0: है
1: वेरी थॉट इज वेरी
0: एनर्जाइज
1: स्ट्रक्चर्ड, फीलिंग
0: और जिस
1: कैटेगोरिकल
0: तरह
1: नहीं
0: की जिस
1: होती है,
0: क्वालिटी
1: ये
0: के
1: आपने
0: आपने
1: कैटेगराइज
0: कैटेगराइज
1: किया था अभी,
0: फिर यू
1: बिट्रे
0: विल ईदर
1: किया,
0: फील गुड
1: इंसल्ट
0: दैट
1: किया, मैं
0: नॉट
1: हर्ट
0: फील
1: हो
0: गुड
1: गई,
0: दीज आर
1: यू नो ये
0: थॉट्स हाँ ये
1: फीलिंग्स आर
0: सारा
1: नॉट क्रिएटेड,
0: स्ट्रक्चर्ड थॉट्स
1: फीलिंग
0: है
1: इज ओनली वी
0: थॉट्स
1: काइंड
0: आर
1: ऑफ टेंड
0: स्ट्रक्चर्ड
1: टू फीलिंग्स में
0: मिक्सअप
1: मिक्सअप्स
0: बिटवीन
1: करे,
0: फ्लूइड
1: दैट
0: है
1: इज
0: एक्चुअली
1: हाँ,
0: फीलिंग्स आर
1: आपको
0: फ्लूइड
1: ऐसे फीलिंग्स अलग अलग नहीं आएगी, ये इंसल्ट की फीलिंग है, ये बिट्रेयल की फीलिंग है, ये
0: एक
1: हर्ट,
0: फीलिंग होगी
1: ना, इट्स ओनली फीलिंग लो और इट्स फीलिंग
0: गुड
1: गुड, एंड दिस लो एंड हाई विल डिपेंड ऑन ये जो स्ट्रक्चर्ड थॉट्स आपने क्रिएट किया, अब उसी सिनारियो में आप कोई और क्वालिटी ऑफ थॉट क्रिएट करो कि मैंने जो किया, फर्स्ट आई विल चेक माई वर्क कि वो
0: फीलिंग होगी
1: सिंसियर था या
0: हाँ
1: नहीं,
0: इट्स
1: ओनली
0: ओनली हो
1: फीलिंग
0: सकता है
1: लो
0: उन्होंने
1: और
0: ठीक से
1: इट्स
0: नहीं
1: नहीं
0: परसीव
1: परसीव
0: गुड
1: किया, या हो
0: एंड
1: सकता
0: दिस
1: है लो
0: उनका
1: एंड
0: मूड ठीक
1: हाई,
0: नहीं है
1: जब
0: विल
1: उनका
0: डिपेंड
1: मूड
0: ऑन
1: ठीक
0: हाउ
1: हो सकता हो
0: नेगेटिव
1: जाएगा,
0: द
1: मैं
0: थॉट्स
1: जाकर
0: आपने
1: बात कर
0: क्रिएट किया
1: लूंगी, अब उसी
0: हाँ
1: सिनारियो
0: उन्होंने
1: में
0: सबके
1: आप कोई
0: सामने
1: और क्वालिटी
0: मेरे
1: ऑफ
0: थॉट
1: थॉट
0: क्रिएट
1: क्रिएट करो,
0: करो लेकिन
1: लेकिन
0: अब
1: अब मैं
0: किया
1: कैसे
0: फर्स्ट आई
1: स्टिल
0: विल
1: चेक
0: रहो
1: माई वर्क
0: सी
1: कि
0: वन
1: मैं
0: फीलिंग
1: सिंसियर
0: हियर
1: ना
0: नाउ
1: या
0: इट्स
1: नहीं,
0: ओनली
1: इट्स ओनली
0: फीलिंग
1: फीलिंग
0: लो
1: लो
0: उन्होंने
1: एंड
0: ठीक
1: हाई
0: से
1: और इट्स
0: नहीं
1: फीलिंग
0: परसीव
1: उसके बाद
0: किया
1: मैं उनके
0: या
1: हो
0: फिर
1: सकता
0: दिस
1: है
0: लो
1: लो का
0: का
1: मूड
0: मूड
1: ठीक
0: ठीक
1: नहीं है,
0: नहीं
1: जब
0: है विल
1: उनका
0: डिपेंड
1: मूड
0: ऑन
1: ठीक
0: हाउ
1: हो
0: नेगेटिव
1: जाए
0: द
1: चार लोग
0: सिचुएशन
1: साथ
0: मैं
1: में
0: जाकर
1: बैठे
0: मैं
1: होंगे, अब
0: उन
1: उसी
0: हाँ मैंने
1: सिनारियो
0: अभी
1: में
0: सबके
1: सबके
0: सामने
1: सामने
0: वो
1: इमेज कोई और क्वालिटी
0: मैं
1: ऑफ
0: उनके
1: थॉट
0: बारे में
1: क्रिएट
0: जाकर
1: किया,
0: रहो
1: उनके
0: मैं
1: सारे लोग
0: कैसे
1: फर्स्ट
0: स्टाइल
1: स्टाइल
0: चेक
1: चेक
0: माय
1: माई
0: वर्क
1: वर्क
0: सी
1: वन
0: वन
1: मूड
0: फीलिंग
1: कर रहे
0: हाँ
1: हैं, इट्स
0: ओनली
1: ओनली
0: डांट
1: फीलिंग
0: फीलिंग
1: लो
0: लो
1: और
0: उन
1: इट्स
0: हाउ
1: सिनारियो
0: फीलिंग
1: में
0: बस
1: आपके बाद
0: बोलो
1: मैं
0: ठीक
1: उनके
0: है
1: हो
0: फीलिंग
1: सकता है
0: दैट्स
1: छह
0: गुड
1: लोग
0: दैट्स
1: का
0: एंड
1: मूड
0: हाई
1: ठीक
0: नहीं
1: नहीं
0: है
1: है, जब
0: सेल्फ
1: उनका
0: लेस
1: मूड
0: हाउ
1: ठीक हो
0: नेगेटिव
1: जाए
0: सेल्फ
1: मैं
0: लेस
1: जाकर
0: हाउ
1: बात
0: नेगेटिव सेल्फ
1: इंसल्ट हो
0: होगी
1: गई,
0: अब
1: उसी
0: उसी
1: सिनारियो
0: सिनारियो
1: में
0: में
1: सब
0: सब
1: लोग
0: लोग
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं
1: वो
0: और
1: और
0: जो
1: जो
0: देख
1: देख
0: रहे
1: रहे
0: हैं
1: हैं
0: वो
1: उस
0: सीन
1: सीन
0: को
1: को
0: वो
1: वो
0: हर
1: कैसे
0: तरह से
1: हो
0: उस
1: सकता है
0: लड़की
1: कि
0: को
1: उन्हें
0: मैं
1: इंसल्ट
0: कंट्रोल
1: होने
0: नहीं
1: का
0: कर
1: डर
0: रहे
1: है,
0: हैं
1: ओनली
0: ओनली
1: फीलिंग
0: फीलिंग
1: हो सकता है
0: लो
1: उन्हें
0: हाउ
1: इस
0: नेगेटिव
1: सिनारियो में
0: सेल्फ
1: आपके
0: लेस
1: बाद
0: हो
1: मैं
0: गई
1: उनके
0: अब
1: हो
0: उसी
1: सकता है
0: सेंस में
1: सिनारियो में
0: लो का
1: आपके बाद
0: मूड
1: मैं
0: ठीक
1: उनके
0: नहीं
1: हो
0: है
1: सकता है
0: सेल्फ लेस
1: सेल्फ
0: हाउ
1: लेस
0: नेगेटिव
1: हाउ
0: सेल्फ
1: नेगेटिव
0: लेस
1: सेल्फ
0: हाउ
1: लेस
0: नेगेटिव
1: हाउ
0: सेल्फ
1: नेगेटिव
0: लेस
1: उसी
0: हाउ
1: सिनारियो में
0: नेगेटिव
1: सब
0: सेल्फ लेस
1: लोग
0: हाउ
1: इमिग्रेट
0: नेगेटिव
1: हैं,
0: सेल्फ लेस
1: आई
0: हाउ
1: फीलिंग
0: नेगेटिव
1: देख रहे
0: सेल्फ
1: हैं
0: लेस
1: उनके
0: हाउ
1: बारे में
0: नेगेटिव
1: जाने
0: सेल्फ लेस
1: जो
0: हाउ
1: बहुत
0: नेगेटिव
1: पहले
0: सेल्फ
1: से
0: लेस
1: ही
0: हाउ
1: लोग
0: नेगेटिव
1: इमिग्रेट
0: सेल्फ
1: हैं
0: लेस हाउ
1: उनको
0: नेगेटिव
1: पता
0: सेल्फ
1: है
0: लेस
1: कोई
0: हाउ
1: लोग
0: नेगेटिव
1: इमिग्रेट
0: सेल्फ
1: हैं,
0: लेस
1: उनको
0: हाउ
1: पता है
0: नेगेटिव
1: कोई
0: सेल्फ लेस
1: इमिग्रेट
0: हाउ
1: हैं,
0: नेगेटिव
1: उनको
0: सेल्फ
1: पता है
0: लेस
1: कोई
0: हाउ
1: इमिग्रेट हैं,
0: नेगेटिव
1: उनको
0: सेल्फ
1: पता
0: लेस
1: है
0: हाउ
1: कोई
0: नेगेटिव
1: इमिग्रेट हैं,
0: सेल्फ लेस
1: उनको
0: हाउ
1: पता है
0: नेगेटिव
1: कोई
0: सेल्फ लेस
1: इमिग्रेट
0: हैं,
1: हैं,
0: उनको
1: आई
0: पता है
1: फीलिंग
0: कोई
1: सिनारियो
0: इमिग्रेट
1: में
0: हैं,
1: सबके
0: उनको
1: सामने
0: पता है
1: उनके
0: कोई
1: हो
0: इमिग्रेट
1: सकता
0: हैं,
1: है
0: उनको
1: कोई
0: पता है कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता है
0: पता
1: कोई
0: है कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता है
0: पता है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता है
0: पता है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता है
0: पता
1: कोई
0: है कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता है
0: पता
1: कोई
0: है कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको
1: पता
0: पता
1: है
0: है
1: कोई
0: कोई
1: इमिग्रेट
0: इमिग्रेट
1: हैं,
0: हैं,
1: उनको
0: उनको प्रॉब्लम ये हो जाती है कि लोग क्या सोचेंगे, यू नो, पूरे
1: ऑफिस में. एक्चुअली ज्यादा पहले ये होना चाहिए मैं क्या सोचूंगी. लोग क्या सोचेंगे इज रियली सेकेंडरी. एक्चुअली आज हम बहुत सारी चीजें इसलिए करते हैं कि लोग क्या सोचेंगे, एंड वी कुड प्रॉब्ली मिस अप विद आवर लाइफ बिकॉज ऑफ वी बीन डूइंग दैट. कि लोग क्या सोचेंगे. कई बार कोई दो लोगों का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है तो कहेंगे गुस्सा तो करना ही है, अगर चुप रहेंगे तो लोग क्या सोचेंगे. लोग सोचेंगे ये तो बिल्कुल इसके अंदर तो कोई ताकत ही नहीं है, इसको तो लोग क्या सोचेंगे, इज नॉट इम्पोर्टेंट. मैं किस चीज़ से गुजरता हूँ वो मेरी सोच

0: सोच पर डिपेंड करता है. अगर इफ आई एम फीलिंग लो टुडे, आप मेरे बारे में कितना भी अच्छा सोचो, कैन यू मेक मी फील गुड? नो, आई हैव टू वर्क ऑन माई सेल्फ. हमारे बहुत सारे बिहेवियर्स इस बात पर डिपेंडेंट है, लोग क्या सोचेंगे. लोग क्या सोचेंगे, आई डोंट नो हाउ मच दैट मैटर्स. मैं अपने बारे में क्या सोच रहा हूँ,
1: लोग एक्चुअली वही सोचने लगेंगे.
0: एक्चुअली डजंट रियली मैटर, क्योंकि आप जो सोचेंगे आप वो एनर्जी क्रिएट करेंगे. जो एनर्जी आप क्रिएट करेंगे वो आपके एनवायरमेंट में फैल जाएगी, एंड वो एनर्जी दूसरे की सोच को क्रिएट करेगी. पहले मैं तो अपने बारे में अच्छा सोचूँ ना. आप मेरे बारे में अच्छा सोचे या नहीं सोचे, हाउ डज दैट मैटर? दैट डजंट बिल्ड माई सेल्फ एस्टीम. लेकिन मेरे लिए क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मेरी खुशी लोगों की सोच पर डिपेंडेंट है. दैट इज़ वॉट आई थॉट, कि अगर आप मेरे बारे में अच्छा सोचोगे तो फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे, फिर आप मेरे से अच्छा बात करोगे तो मुझे खुशी होगी. तो मैंने ज़्यादा ये सोचा कि लोग क्या सोचेंगे. जब मुझे ये समझ में आया कि मैं क्या सोचूंगी उस पर मेरी खुशी डिपेंडेंट है, तो सारा फोकस किस पर चला जाएगा, कि मैं क्या सोच रही हूँ. डेस्टिनी कैसे क्रिएट हो रही है? बॉस ने मुझे डांटा, ठीक है, डांटा इसलिए क्योंकि कोई गलती हो गई है. अब मेरी थॉट्स कैसी वाली चलनी शुरू होती है, कितनी भी मेहनत करो ये तो डांट देते हैं. मैं आगे से कुछ नया नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि नया भी करो तो भी यहाँ से तो कोई क्रेडिट मिलता ही नहीं है. इन्होंने तो फिर भी डांटना, माइट एज वेल मैं इतनी मेहनत क्यों करूँ, बिना बात के इतनी मेहनत करो, फिर लोगों के सामने कुछ मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं है ना. दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ थॉट. अब गए अपने डेस्क पे और काम करने बैठे, कैसा काम होगा?
1: फीलिंग इतनी लो हो चुकी है. यू नो, हम ये बात कर रहे थे ना कि हमारी जो थॉट
0: है, नाउ व्हाट विल बी माय डेस्टिनी, बिकॉज नाउ विद दैट लो क्वालिटी ऑफ थॉट एंड दैट लो फीलिंग, आई एम सिटिंग एंड वर्किंग ऑन माय कंप्यूटर और ऑन माय फाइल और वट एवर विद दीज थॉट्स, कि यहाँ तो ऐसा ही होता है, ये तो कुछ भी करो और काम कर रहे हैं, वो काम कैसा होगा? वो एनर्जी कैसी होगी जो रे? अब जरूर गलती निकलेगी, पहले नहीं भी थी तो, क्योंकि इतनी लो स्टेट में अगर काम करेंगे तो वो वर्क एफिशिएंसी पे तो मेरा इफेक्ट पड़ने ही वाला है.
1: वही कहा जाता है कि जब डांट पिट रही हो तो हाथ हिलने लगते हैं, नहीं
0: अब वो लो एफिशिएंसी में मैंने काम किया तो पहले वाले काम में गलती नहीं भी होगी ना, तो इस वाले काम में तो गलती जरूर निकल आएगी. अब मैं हर्ट फील हुई हूँ, अब मैं वो काम लेकर फिर से बॉस के पास जाती हूँ. व्हेन आई एम हर्ट, कैन आई लाइक द बॉस? आई हेट द बॉस फॉर व्हाट द बॉस हैज डन. तो जैसे ही मैं बॉस के सामने गई, मेरी वाइब्रेशंस कैसी गई? आई डोंट लाइक यू, ये एनर्जी आई ट्रांसमिट. काम भी मैंने वो सबमिट किया, उस काम में भी हो सकता है अब तो डांट जरूर पड़नी पड़ेगी,
1: लेकिन मेरे मन में ये आएगा कि नाउ ही इज गोइंग टू डू इट अगेन.
0: यस, सो आई क्रिएट द थॉट व्हिच दिस क्रिएट्स फॉर मी. द सेम थिंग व्हाट आई कुड डू इज, कि डांट पड़ी है वट एवर रीजन जिसके लिए उन्होंने डांटा, आई हैव टू स्टिल गो बैक टू माई वर्क. इट मे नॉट बी वेरी इजी दैट टाइम, क्योंकि जब डांट पड़ती है तो आई हैव गॉट इन टू द हैबिट ऑफ वो डिजेक्टेड थॉट्स को फील करना. इफ आई कैन, इट्स नॉट ईगो, बट इफ आई कैन गो बैक टू माई डेस्क एंड से ओके लेट मी गेट बैक टू द वर्क ऑल ओवर अगेन. पहले अगर गलती हुई थी तब तो और भी इम्पोर्टेंट कि आई गो बैक विद फोकस, एंड अगर गलती नहीं थी फिर भी डांटा गया था, आई स्टिल गो बैक, चलो मैं फिर से इनको यही करके देता हूँ, लेट्स सी अब इस बार वो ठीक लगता है कि नहीं. बट आई हैव टू पुट अ फुल स्टॉप टू दोज नेगेटिव थॉट्स उस टाइम, और फिर उस स्टेबिलिटी से अगर मैं काम करूँ. अगर मैं हर्ट नहीं हूँ तो मैं वो सीनियर के प्रति भी बहुत गलत क्वालिटी के थॉट्स नहीं क्रिएट करूँगी. आई कैन से आई कैन अंडरस्टैंड ये उनके अपने कॉम्प्लेक्सेस हैं या अपना आज वो डिस्टर्ब्ड होंगे या जो भी, आई कैन जस्ट वेव इट ऑफ. तो जो हम कहते हैं कि औरों के प्रति गुड विशेज रखना, तो वो औरों के प्रति गुड विशेज कब रख सकेंगे? जब हमारा माइंड डिस्टर्ब्ड नहीं है.
1: अपनी स्टेबिलिटी तो फिर भी रख पाऊँ कि ठीक है उनकी कोई वजह होगी कि मैंने किया, लेकिन उनके प्रति शुभ भावनाएं,
0: शुभ भावना क्रिएट नहीं करनी होती है. यू डोंट हैव टू से सिट एंड से उनके साथ बहुत अच्छा हो जाए, दिस इज नॉट शुभ भावना. शुभ भावना सिर्फ ये है कि आप स्टेबल हैं.
1: मैं
0: तो एटलीस्ट आपसे कोई नेगेटिव क्वालिटी ऑफ थॉट दूसरे के प्रति नहीं जा रही है, दैट इटसेल्फ इज मोर देन इनफ. जैसे कि परिस्थिति आई और परिस्थिति गई और परिस्थिति ने मेरे ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं डाला, दैट

0: चराद हुए कुराना तेरा शाम देखा गई अचराद हुए आदार मेरा शाम कुराना तेरा
1: शासन आपल्या दारी या अभियानांतर्गत पाचोरा तालुकास्तरीय

ज्ञानेश्वरी भाग एक। नमामि सद्गुरुं शांतं सच्चिदानंद विज्ञान कशिकाय। माऊली हा शब्द तर स्त्रीला उच्चारित केला जातो।

0: शिक्षण, माहिती, ज्ञान, मनोरंजनाने सजलेले सदाबहार कार्यक्रम ऐकायला विसरू नका. रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
1: रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
2: आप सुन रहे हो रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपला खानदेश, आपली माणसं.
3: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट.
4: नमस्कार, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुनो भाई साधो. दोस्तों, क्या आपने कभी किसी कुशल धनुर्धर या निशानेबाज को देखा है? जब एक शिकारी जंगल में किसी अत्यंत तेज और चौकन्ने हिरण का शिकार करने निकलता है तो वह केवल तीर कमान हाथ में लेकर हवा में तीर नहीं चलाता. सबसे पहले वह अपने शरीर को एक विशेष मुद्रा में बिल्कुल अडिग और स्थिर करता है. अपनी कमान को पूरी ताकत से कानों तक खींचता है, अपनी सांसों को रोकता है और अपनी पूरी एकाग्रता और उस लक्ष्य पर टिका देता है. यदि उसका ध्यान जरा सा भी भटका या कमान ढीली पड़ी तो वह चंचल हिरण एक ही छलांग में घने जंगल में ओझल हो जाता है और शिकारी का सारा श्रम व्यर्थ चला जाता है. अध्यात्म की यात्रा भी बाहर के किसी जानवर के शिकार की नहीं, बल्कि अपने ही भीतर कुलांचे भरते चंचल मन को साधने का एक महाअभियान है. कबीर साहब आज हमें उसी परम धनुर्धर की तरह अपने शरीर और प्राणों को साध कर मन का शिकार करने की कला सिखा रहे हैं. आइए सुनते हैं कबीर साहब का यह दार्शनिक सूत्र. काया कसु कमान जू पंच तत् करीबाण, मारो तो मन मिरग कु नाही तो मिथ्या जान. काया कसु कमान जू पंच तत् करीबाण, काया कसु कमान जू पंच

0: श्रोताओं, कबीर साहब साधक को एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा की तरह ललकारते हुए कहते हैं, काया कसु कमान जू, हे साधक, तू अपनी इस काया यानी शरीर को योग, संयम और आसन की दृढ़ता से एक कमान यानी खींचे हुए धनुष की तरह पूरी तरह कस लें, इसे आलस और प्रमाद से मुक्त कर दें, पंच तत्व करी बाण और अपने भीतर के पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा अपनी पांचों प्राण ऊर्जाओं को एकाग्र करके ज्ञान और विवेक का एक अचूक बाण यानी तीर बना लो। अब उस अचूक तीर का निशाना कहाँ लगाना है, अगली पंक्ति में कबीर इसका लक्ष्य बताते हैं। मारो तो मन मिर्ग को, यदि तुझे सचमुच कोई शिकार करनी है तो बाहर किसी जीव को मत मार, अपने ही भीतर विषय वासनाओं के घने जंगल में बेतहाशा दौड़ रहे इस मन मिर्ग यानी चंचल मन रूपी हिरण को ज्ञान के तीर से साध लें, इसे शांत कर दें, नहीं तो मिथ्या जान। और यदि तू अपने इस मन को वश में नहीं कर सका तो समझ ले कि तेरी सारी बाहरी पूजा, सारे ग्रंथ, सारे तिलक और सारी साधनाएं मिथ्या यानी पूरी तरह झूठी, दिखावटी और व्यर्थ हैं। यह दोहा हठ योग और राजयोग के समन्वय का शिखर है। मुंडोपनिषद में भी प्रणव अर्थात ओम को धनुष, आत्मा को तीर और ब्रह्म को उसका परम लक्ष्य कहा गया है। मन को यहाँ मिर्ग यानी कस्तूरी मृग की तरह माना गया है जो अपने ही भीतर की सुगंध से अनजान होकर बाहर की झाड़ियों में भटकता रहता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक शरीर और इंद्रियां अनुशासित नहीं होंगी और जब तक प्राणों की ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होगी, तब तक मन की इस चंचलता को भेदना असंभव है। असली विजय दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने ही मन को साधने में है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। हम रोज अपने तीरों से दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमजोरियाँ और दूसरों की बुराइयों पर निशाना साधते रहते हैं। हम पूरी दुनिया को सुधारने का बीड़ा उठाए घूमते हैं, लेकिन हमारे भीतर का वह मन मिर्ग वासनाओं की हरियाली देखकर हर पल बेलगाम भागा जा रहा है। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर का धनुधर बनने की, अपने शरीर को अनुशासन और अपनी सांसों को सजगता की कमान में कसिए, अपने विवेक का तीर सीधे अपने मन के अहंकार और चंचलता पर चलाइए। जब आप उस राम नाम के सुमिरन से अपने भीतर के इस मन को साध लेंगे तो आपकी सारी भटकाव शांत हो जाएगी और अपने ही भीतर परम आनंद के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।
1: हाय, मी आरजे स्वरा, अपन ट्यून के लिए रेडियो मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: आपके सष्ट बात तथागता धम्माणुपश्यनेचा संबंध असतो चेतनेशी, सांधली जाते चेतना बाह्यमन आणि अंतर्मनाने। निसर्गाच्या विशाल पटावरील चेतनेसोबत स्पंदनांसह अति निकटचा अनुबंध चेतनेचा धम्मानुपश्यनेशी त्यामुळे होत असतो निरंतर संवाद। चित्तानुपश्यना आणि धम्मानुपश्यना यांचा सातत्याने चार निसर्ग घटकांनी बनलेले हे शरीर आणि मन, त्यातील चालणारा उदयव्यय, अस्तित्व भाव सातत्याने, कायानुपश्यना, वेदनानुपश्यना, चित्तानुपश्यना आणि धम्मानुपश्यना यांच्या असंख्य बारकाव्यांसह होणारी अनुभूती, पाहणारी अंतर्दृष्टी, सातत्यपूर्ण निरीक्षण आणि शील संवर्धन, प्रवास करीत असते समाधीकडे, समाधीकडून सम्यक समाधीकडे, पूर्ण आणि संपूर्ण वैज्ञानिकतेसह, वैज्ञानिक आध्यात्मिकतेसह, प्रज्ञाशील करुणेच्या आणि वैज्ञानिक आध्यात्मिकतेमधील वास्तववादी विवेकासह. हे निरीक्षण, ही जाणीव, हे पाहणे, हे अनुभवणे, हा अभ्यास, हे संशोधन असते एका जिज्ञासूचे. जिज्ञासेमधील ज्ञानकणांच्या आकलनाचे, आकलन करून घेणाऱ्या अभ्यासकाचे, आकलन निरीक्षणातील अंतिम शोध लावणाऱ्या संशोधकाचे, तत्वचिंतकाचे, मनातील एकाग्रचित्त स्वतःस जेव्हा विश्व तपासते बारकाव्याने, त्यावेळेला सातत्याने एका महान वैज्ञानिकाचा जन्म होत असतो वारंवार विकार क्षयासह अहंताच्या मार्गाने. दृढ संकल्प करावा लागतो कष्टातील सातत्यपूर्णतेने. हा वैज्ञानिक अभ्यास त्यासाठीच. संकल्प करावा लागतो अधिष्ठानाचा. अधिष्ठानाचा संकल्प तेव्हा मूर्त रूपात येतो ज्यावेळेला पंचशीलाचे पालन होते. हा अनुबंध आहे उत्कर्षाचा, हा अनुबंध आहे विवेकी विकासाचा, हा अनुबंध आहे करुणा प्रेमाचा, हा अनुबंध आहे मानवतेच्या कल्याणाचा. पंचशीलाने स्थिरता लाभते, अधिष्ठान निर्माण होते. हिंसा करू नये कायावाच्या मनाने, खोटे कधी बोलू नये, कामवासना बाळगू नये, चोरी कधी करू नये आणि व्यसनांच्या आहारी कधी जाऊ नये. मन आणि चेतना दोलायमान होणाऱ्या अस्थिरतेच्या घटनांचा स्पर्श टाळाला म्हणजे निर्माण होते अधिष्ठान आणि सांभाळले जाते शील. शील संवर्धनाची ऊर्जा संग्रहित होते मनाच्या एकाग्रतेसाठी. मनाच्या एकाग्रतेतून रमते प्रत्यक्ष अनुभूती चेतनेमध्ये, संवेदनेमध्ये, कायेमध्ये आणि निसर्गाच्या निरीक्षणामध्ये. सत्य शोधणाऱ्या संशोधनात विसरून जातो साधक स्वतःला. तो अभ्यासक संशोधक बनून संशोधनाच्या पायऱ्या चढत राहतो समाधी मार्गाने. शील संवर्धनातून समाधी मार्ग सोपा आहे आणि समाधी मार्गातील संशोधनाने प्रज्ञेचे पुष्प उमलायला लागते. या प्रज्ञापुष्पाने मिळालेले ज्ञान तेजपुंज असते. ही तेजपुंज प्रज्ञा तेजस्वी बनवते साधक अभ्यासकाला. तेजपुंज निर्माण करते करारी व्यक्तिमत्व प्रज्ञामयी संशोधकाचे आणि पेरते विवेक त्याच्या बुद्धिवादा.
3: नमस्कार, मी शर्मिला राजाराम शिंदे आणि आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
4: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि आपण ट्यून केलं आहे रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
5: श्रोते हो नमस्कार, मी प्राध्यापक योगेश सोमण, आपण ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
6: रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग.
7: आप सुन रहे हो रेडिओ मनभावन 90.8 FM, ऑलवेज हार्ट टचिंग. आपलं खानदेश, आपली माणसं.

0: नमस्कार।
1: आप सुन रहे हो?
2: आप सुन रहे हैं?
0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही
3: शिक्षण माहिती
4: रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: आप सुन रहे हैं रेडिओ मन भावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।

श्रोताओं, कबीर साहब साधक को एक सच्चे आध्यात्मिक योद्धा की तरह ललकारते हुए कहते हैं, काया कसु कमान जू, हे साधक, तू अपनी इस काया यानी शरीर को योग, संयम और आसन की दृढ़ता से एक कमान यानी खींचे हुए धनुष की तरह पूरी तरह कस लें, इसे आलस और प्रमाद से मुक्त कर दें, पंच तत्व करी बाण और अपने भीतर के पंच तत्व अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश तथा अपनी पांचों प्राण ऊर्जाओं को एकाग्र करके ज्ञान और विवेक का एक अचूक बाण यानी तीर बना लें।

बेतहाशा दौड़ रहे इस मन मिरग यानी चंचल मन रूपी हिरण को ज्ञान के तीर से साध लें, इसे शांत कर दें, नहीं तो मिथ्या जान। और यदि तू अपने इस मन को वश में नहीं कर सका तो समझ ले कि तेरी सारी बाहरी पूजा, सारे ग्रंथ, सारे तिलक और सारी साधनाएं मिथ्या यानी पूरी तरह झूठी, दिखावटी और व्यर्थ हैं। यह दोहा हठयोग और राजयोग के समन्वय का शिखर है। मुंडोपनिषद में भी प्रणव अर्थात ओम को धनुष, आत्मा को तीर और ब्रह्म को उसका परम लक्ष्य कहा गया है। मन को यहाँ मिरग यानी कस्तूरी मृग की तरह माना गया है जो अपने ही भीतर की सुगंध से अनजान होकर बाहर की झाड़ियों में भटकता रहता है। कबीर समझा रहे हैं कि जब तक शरीर और इंद्रियां अनुशासित नहीं होंगी और जब तक प्राणों की ऊर्जा एक बिंदु पर केंद्रित नहीं होगी तब तक मन की इस चंचलता को भेदना असंभव है। असली विजय दुनिया को जीतने में नहीं बल्कि अपने ही मन को साधने में है। आज का चिंतन मेरे दोस्तों, आज जरा ठहर कर देखिए कि हमारा ध्यान कहाँ लगा हुआ है। हम रोज अपने तीरों से दूसरों की गलतियाँ, दूसरों की कमजोरियाँ और दूसरों की बुराइयों पर निशाना साधते रहते हैं। हम पूरी दुनिया को सुधारने का बीड़ा उठाए घूमते हैं लेकिन हमारे भीतर का वह मन मिरग वासनाओं की हरियाली देखकर हर पल बेलगाम भागा जा रहा है। आज कोशिश कीजिए अपने भीतर का धनुधर बनने की, अपने शरीर को अनुशासन और अपनी सांसों को सजगता की कमान में कसिए, अपने विवेक का तीर सीधे अपने मन के अहंकार और चंचलता पर चलाइए। जब आप उस राम नाम के सुमिरन से अपने भीतर के इस मन को साध लेंगे तो आपकी सारी भटकाव शांत हो जाएगी और अपने ही भीतर परम आनंद के परम पद को प्राप्त कर लेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ, सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम राम।